प्रिंसिपल महाशक्ति देवी की जय, उमापति महादेव की जय, पौनपुत्र हनुमान की जय, नवदुर्गा माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय, प्रेम और शक्ति से बोलो सत्य सनातन धर्म की जय जय।

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Whoever has your name in his heart has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: जय श्री राम। मल मास और अधिक मास आल्सो नोन एज पुरुषोत्तम मास इज द एस्ट्रोलॉजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिशनल मंथ इन द हिंदू कैलेंडर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द साइकल्स ऑफ द मून। द लूनर मंथ इज अराउंड 29.5 डेज and the solar month is 30 to 31 days. As such, a solar year is made up of 365 days and the lunar year amounts to 354 days. A gap of 11 days increases each year, giving rise to an extra month every 3 years. Nirnay Sindhu outlines, Asankranti Maase Adhika Maase Sputaha Syad. The month that does not carry a Surya Sankranti is called Adhik Maas. Since the 13th month was not assigned to any Deva, Lord Vishnu assigned Adhik Maas to himself, hence the name

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Hey my friends, Ricky Ramlagan here, inviting you to join me on the musical journey to the Midnight Hour, every Tuesday to Friday from 4 to midnight. Your Sundar Sapna on Radio Jagriti, 102.7 FM, where I bring you the passion of beautiful, breathtaking, specially selected music and the warmth of great company. The music you know, the music you love, the music you want to listen to on your Sundar Sapna. Your enchanted journey to beautiful dreams.

कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

श्री शैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे नैनों की नगरिया में राम है। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे नैनों की नगरिया में राम है। मेरे मन में है राम।
1: वाओ, सो ब्यूटीफुली डन।
0: मेरे

राम की है, राम है रमैया, सासों के स्वामी मेरे नैया के की भैया हो, सासों के स्वामी मेरे नैया के की भैया, नैया के की भैया।